ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: मूव फॉर 10 इज हियर, द न्यू चैलेंज फ्रॉम दिस गर्ल कैन दैट एवरीवन कैन जॉइन। मूव फॉर 10 मिनट्स 10 टाइम्स अ मंथ। आई गॉट मोर एनर्जी, आई फील मोर कॉन्फिडेंट, आई एम स्लीपिंग बेटर। फ्रॉम अ स्ट्रेच इन द मॉर्निंग to a brisk walk around the park. No pressure, no strict schedule. Just move when it suits you. I've logged 3 sessions already and I'm feeling good. Women across the country are moving for 10 minutes 10 times this month. To join, search This Girl Can Move for 10.

Welcome back after yet another beautiful song on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है अभी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. मतलब सनराइज रेडियो आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं, आई होप आपको पता है. वेल डैब के जरिए आप सुन सकते हैं इन मैनचेस्टर, एट द सेम टाइम दुनिया के किसी भी कोने में. आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड देन देयर यू गो, इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं. और हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunriseradio.fm पे लॉगिन कीजिएगा. सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। वो राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज और द बीम। ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की जरूरत नहीं. जस्ट अ थॉट. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, नथिंग लाइक द गोल्डन ओल्डीज। पर राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़ और द बीइंग ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना आप जाएगा। आई सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर, स्टे ट्यून्ड।
1: Oh my God, this is original.

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करे महीने में 10 दफा, मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें। सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें। सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.

Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, dedicated.

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हीरो ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, व्हिच मींस दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. जस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया. मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर यू नो यू जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग फॉर दिस सॉन्ग, सो दिस वॉज वन फॉर मी. और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया.

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक वाली ओशन राइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस। और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

लाजवाल खजाना की ख्वाहिश के साथ नाहिद चट्ठा आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर है। जनाब तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, नॉट गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप खूबसूरत हफ्ते का रोज़ इन्जॉय कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स जाती गर्मियों के चंद धूपे हैं जो हम इन्जॉय कर लें। दिस ब्यूटिफुल डे टुडे, आई होप यू वुड बी इन्जॉइंग दैट। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 FM और 103.2 FM अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और डैप पर जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टनकीन्स और वेस्ट लंदन में भी। जनाब आप सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन वेबसाइट पर www.sunrise.radio। और जनाब इस खूबसूरत दिन में इफ यू फैंसी अ बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द रेडियो टू द स्टूडियो इन सनराइज रेडियो स्टूडियो रश। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर। प्ले नाउ एट सनराइज डॉट रेडियो एंड जॉइन द फ्री सनराइज लिसनर्स क्लब टू अनलॉक इवन मोर। जी हाँ, सनराइज लिसनर्स क्लब को ज्वाइन कीजिए और बॉलीवुड क्विज में शामिल हो जाइए। इसके अलावा जानिए कि आपकी पर्सनैलिटी किस बॉलीवुड स्टार से मिलती है। जी ये तो है अभी तो फन। तो समीन आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत से अशार के साथ और उम्मीद है कि अशार का सिलसिला यानी कि पोइट्री का सिलसिला, खूबसूरत से गीतों का सिलसिला जारी रहेगा और आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी। प्रोग्राम का फॉर्मेट एज यूजुअल है जिसमें फर्स्ट टू आवर्स हैं जिसमें हम गीत सुनेंगे, पोइट्री होगी, आपकी टेलीफोन कॉल्स, आपसे मुलाकात और फिर जो लास्ट आवर हो

0: लेकिन डॉक्टर सारा अहमद ने कल मुझे फ़ोन किया कि ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस शी वोंट बी एबल टू मेक इट टुडे, आज वो नहीं आ पाएंगी, तो तुहानू अगले वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा। असी क्या, कोई गल नहीं, जिंदगी दे विच चलता रहिंदा है। वी नेवर नो कल दी की खबर सानू साडे नाल की हो जाए। अगर उनके पास कोई ऐसी मसरूफियत आ गई है जो अवॉइड नहीं की जा सकती, तो ऑफ कोर्स हम तो फ्लैक्सीबल हैं, असी ब्रेडफोर्ड दे लोग हैं जी, खुला दिल रखने आ, तुसी जदों भी आओ तानू जी आया नू जी। तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी डॉक्टर सारा अहमद और जेफ, एंड होपफुली नेक्स्ट वीक में वो हमारे साथ मौजूद हों। गल्लां गल्लां च इन्ना टाइम हो गया है कि गीत का टाइम हो गया है, ऐसा करने हैं कि पहले सुन लेने हैं, हिट ऑफ द आवर तो साड़ी शायरी तो चलती रहेगी, तीन घंटे अजे असी इत्थे ही हाँ साढ़े साथ रहना, साढ़े नाल नाल रहना, तो सुनते रहना सनराइज रेडियो। बढ़ते हैं इस खूबसूरत से गीत की जानिब, इंजॉय कीजिएगा एज अ हिट ऑफ द आवर।
1: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: वेलकम बैक समीन। आप से आपने सुना खूबसूरत सा गीत और उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा। आयशा जी आपसे बात हुई, वाह जी वाह, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आज तो आपका फ़ोन आ गया। नॉर्मली एंड भी आता है तो दैट वाज अ नाइस सरप्राइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हंसती रहें मुस्कुराती रहें खुश रहें। तो जनाब ऐसा है कि अब हम कुछ ही देर में बढ़ने वाले हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, लेकिन हमारे पास एक डेढ़ मिनट बाकी है जिसमें मैं आपको चंद अशआर सुनाती हूँ और उसके बाद हमारा टाइम हो जाएगा कमर्शियल ब्रेक का। तो जी अशआर कुछ यूँ हैं जी अमजद इस्लाम अमजद के, क्या खूबसूरत, पहले भी सुना चुकी हूँ इसी प्लेटफॉर्म से लेकिन जब भी पढ़ती हूँ नया ही लगता है, ताज़ा ही लगता है। मेरे हम सफ़र तुझे क्या खबर, मेरे हम सफ़र तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए, कि जो एक रब्त था दरमिया वो बिखर गया, वो हवा चली किसी शाम ऐसी हवा चली, कि जो बर्ग थे सारे शाख जां वो गिरा दिए, वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ा दिए, वो जो रास्तों का यकीन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशाने पा भी मिटा दिए, मेरे हम सफ़र है वही सफ़र मगर एक मोड़ के फ़र्क से, तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया, उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया, मेरा सारा वक्त निकल गया। जी अमजद इस्लाम अमजद की ये आज़ाद नज़्म आपकी गोश गुजार की, उम्मीद है पसंद आई होगी। बढ़ते हैं टाइम चेक की जानिब, टाइम चेक करके हम बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ, देखते हैं टाइम शाइम की हो गया है।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: किस्सा मैंने इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:15 यानी कि 11:15। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, होती है इसके बाद मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा।
2: सनराइज रेडियो।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
6: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
0: जी हाँ सामीन, वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले गीत की जानिब, एंजॉय कीजिएगा।

जी जनाब, ये दिल क्या करे, हमें तो खुद पता नहीं है ये दिल क्या करे। ऐसा करते हैं कि हम अगला गीत सुनते हैं, हीरा खान जी की फरमाइश पर, मुकेश की आवाज़ में है और उनके तमाम दोस्तों के नाम उन्होंने कहा है ये गीत करें। उनके दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्होंने बताया, तो हीरा खान जी की तरफ से उन तमाम दोस्तों के लिए जो उनका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये गीत करते हैं मुकेश की आवाज़ में है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बहुत ही खूबसूरत गीत है, इन्जॉय कीजिएगा।

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: जी हाँ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, समीन ऐसा है कि दिन तो ढल जाएगा और हमारी बात हुई है तारिक जुल्फी साहब से। और तारिक जुल्फी जी, आपने फरमाइश की है एक गीत की, और मिसेस इसहाक की तरफ से भी फरमाइश है सेम गीत की। ये कैसे हो सकता है? ऐसा है कि तारिक जुल्फी जी, जो आपने फरमाइश की है वो हम प्ले करेंगे, क्योंकि हमारी कमर्शियल ब्रेक बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल थोड़ी सी दूर है, तो वो हम गीत प्ले करेंगे ठीक कमर्शियल ब्रेक के बाद, और फिर मैं आपको बताऊंगी वो क्या गीत है और वो क्यों गीत है। तो ऐसा है कि जब तक कमर्शियल ब्रेक है, चंद अशआर आपकी नज़र करती हूँ, और उसके बाद हम कमर्शियल ब्रेक के बाद की तरफ जाएंगे, और फिर जो तारिक जुल्फी साहब की तरफ से जो गीत है उसकी वजह, और जो मिसेज इसहाक साहिबा की तरफ से गीत है वो सेम है, और वो उसकी भी वजह हम आपको बताएंगे ठीक कमर्शियल ब्रेक के बाद। अशआर सुनिएगा। अशआर कुछ यूं है जी, उम्र की धूप ढलने लगी है मगर अभी कुछ रोशनी सरे शाम बाकी है, जो सफर तय हुआ वो बहुत हो चुका, जो बचा है वो कम है मगर नाम बाकी है। कुछ रफीके सफर रास्ते में गए, कुछ के चेहरे फकत याद बन के रह गए, माँ की आवाज़ अब घर में आती नहीं, बाप के साए किस्सों में ढलते गए। कुछ बहन भाई, कुछ दोस्त, कुछ हम सफ़र एक एक करके महफिल से उठते गए। हम समझते रहे वक्त ठहरा हुआ और मौसम दबे पाँव गुजरते गए, अब हिसाबे बरस से भला फ़ायदा कितनी मोहलत है किसको खबर दोस्तों, आओ जो आज हैं इनको जी भर के देखें, कल कहाँ होंगे किसको खबर दोस्तों। कब से फूलों के पास से गुजरते रहे, आज रुक कर ज़रा उनकी खुशबू तो लें, चाय ठंडी भी हो तो कोई गम नहीं, बैठ कर दो घड़ी साथ हंस तो लें। वो पुरानी शरारत, वो किस्से, वो नाम फिर से छेड़े किसी शाम मिल बैठ कर, कोई शिकवा अगर दिल में बाकी भी है, आज जाने दे एक जाम दिल बैठ कर। फोन रख दें ज़रा, वक्त को वक्त दें, जिनसे कहना है कह दें कि तुम खास हो, एक तस्वीर कम और एक लम्हा ज़्यादा, क्या खबर कल ये कुर्बत हमारे पास हो। मौत आएगी ये बात अपनी जगह, इसके आने का मातम अभी क्यों करें, जिंदगी आज दरवाजे पर है खड़ी, जो हमारे हैं उनसे मोहब्बत करें, जो गए उनकी यादें चिरागों सी हैं, इन चिरागों को दिल में जलाए रखें, और जो आज बैठे हैं पहलू में अपने, इनको कल की तरह क्यों गंवाए रखें। वक्त की तेज रफ्तार रुकती नहीं, और ना लौटेगा गुजरा हुआ काफला, आओ कुछ देर फूलों के नज़दीक बैठें, अभी कुछ शाम बाकी है कुछ रास्ता। जी हाँ समीन, ये थे चंद अशआर, उम्मीद है आपने पसंद किए होंगे। हमें आज की अहमियत को जानना चाहिए, गुजरे हुए लोग, गुजरे हुए पल वो दियों की तरह हमारे दिल में तो रहेंगे, लेकिन जो आज हमारे पास हैं उनकी तो कदर कर सकते हैं ना हम, क्या ख्याल है, और उनको अप्रीशिएट करें, उनकी कदर करें। इसके साथ ही बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा होती है मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा। Sunrise Radio.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
0: जी सामेन, बढ़ते हैं इवेंट्स डायरी की जानिब.
4: Wherever you're listening, here's your guide to what's on over the coming days. First, in Bradford, there's a very different cinema experience at Pictureville Cinema at the National Science and Media Museum. Radiohead times Nosferatu, a symphony of horror, pairs the classic 1922 silent vampire film Nosferatu with music from Radiohead's Kid A and Amnesiac, creating a haunting new soundtrack to one of cinema's most influential horror films. Also across the Bradford district, the Ilkley Literature Festival begins on Friday the 2nd of October and continues until Sunday the 18th. The North's longest-running literary festival returns with more than 100 author events, performances and workshops taking place across Ilkley. Over in Calderdale, the Calderdale Open Art Exhibition 2026 continues at Smith Art Gallery in Brickhouse until the 15th of November, showcasing original work from both amateur and professional artists from across the region. And in Halifax, Beryl Robinson, the Sinister Traveller, continues at Dean Clough. Beryl only began painting at the age of 76 and went on to create more than 100 distinctive works in an extraordinary burst of creativity. In Leeds, the Leeds International Festival of Ideas begins at Leeds Playhouse on Tuesday the 6th of October and continues until the 10th. This year's programme brings together major names and thought-provoking conversations, with guests including Louis Theroux, Elizabeth Day, Evelyn Glennie, James O'Brien, Chris Packham and Tim Minchin. In Manchester, there's live theatre at Lowry, with The Silence of the Lambs opening on Tuesday the 6th of October. And throughout the autumn, visitors can also explore Lowry's programme of free exhibitions and activities. Over in East Lancashire, there's plenty happening in Blackburn. Reflections, the musical legacy of Diana Ross, comes to Blackburn Empire Theatre on Monday the 5th of October, celebrating the music of Diana Ross and the Supremes. And the newly refurbished King George's Hall has a packed autumn programme following its reopening. In Derby, Lara Croft, 30 years on, from Derby to global icon, continues at Pickford's House until the 28th of November. The free exhibition celebrates 30 years of Tomb Raider, with original development material, memorabilia, collectibles and interactive activities celebrating the character created by Derby Games studio Core Design. In Milton Keynes, the acclaimed stage adaptation of The Curious Incident of the Dog in the Nighttime opens at Milton Keynes Theatre on Tuesday the 6th of October and continues until Saturday the 10th. The story follows 15-year-old Christopher Boone as his investigation into the mysterious death of a neighbour's dog takes him on an extraordinary journey. And finally, in West London, Henry Moore, Monumental Nature, continues at Kew Gardens until the 31st of January. Discover 30 monumental sculptures across Kew's famous landscape, alongside more than 90 smaller works. And on Tuesday the 6th of October, Kew's special £10 Tuesday ticket offers daytime admission to the gardens for just £10. Sunrise Spotlight. And looking a little further ahead, this week's Sunrise Spotlight is Bollywood Meets Bangra 4, taking place at Area in Manchester on Friday the 23rd of October from 9 p.m. until 2 a.m. And even better, it's completely free. Get ready for a huge mix of Bollywood, Bangra, hip-hop, Afro and R&B with Dutch sensation Jenna performing live, alongside DJs, dancers, dole players, and entertainment from Punjabi roots. It's all happening at Area, 50 Sackville Street in Manchester, on Friday the 23rd of October. You'll find full details for Bollywood Meets Bhangra 4 on the Sunrise Radio events calendar at sunrise.radio. And if you're organising a free community event, charity fundraiser, or local festival, you can add it to the Sunrise Radio event

आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ, तारिक जुल्फी जी, आपने हमें फोन किया था और फरमाइश की थी गीत की, और मिसेस इसहाक की भी फरमाइश है सेम गीत की, क्योंकि आज मिस्टर मोहम्मद इसहाक साहब का बर्थडे है। हाँ जी, उनका बर्थडे है, और बर्थडे के लिए तारिक जुल्फी साहब की तरफ से और मिसेस इसहाक की तरफ से ये खूबसूरत सा गीत हम जी डेडिकेट करते हैं मिस्टर मोहम्मद इसहाक साहिब को। लेकिन इस तरह कैसे कर सकते हैं जी, हम पहले आपको एक शेर सुनाएंगे और उसके बाद गीत पर जाएंगे। शेर कुछ यूं है आपके लिए खास मिस्टर मोहम्मद इसहाक साहिब, ये सनराइज रेडियो की तरफ से, हमारे तमाम प्रेजेंटर्स की तरफ से, सारी टीम की तरफ से। बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहें खुशियाँ, बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहें खुशियाँ, हर बूंद तेरे दिल से हर गम को मिटा दे। जनाब, ये हमारी तरफ से आपकी नज़र ये शेर था, आपकी समातों की नज़र, और जो आपकी मिसेस हैं उनकी तरफ से, और तारिक जुल्फी जी आप उनकी तरफ से आपके लिए ये गीत है। तमाम सुनने वाले भी इंजॉय कीजिए, और जिन जिनका आज बर्थडे है सब इंजॉय कीजिए, जिनका नहीं है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस खूबसूरत से गीत की जानिब।

0: वेलकम बैक सामिन जी, कैसा लगा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ये जी मिसेस इसहाक की जानिब से और तारिक जुल्फी साहब की जानिब से उनके फ्रेंड मोहम्मद इसहाक साहब के लिए था जिन्होंने जिनका आज बर्थडे है और भी बहुत से लोगों का आज बर्थडे होगा उन सब के लिए। तो इस गीत के दौरान हाजरा जी आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा की तरह आपकी आवाज़ में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो चाशनी वो महसूस होती है और वो कानों पर बहुत बहुत मीठी बन के गिरती है। थैंक यू सो मच फॉर लवली वर्ड्स, फॉर वेरी नाइस वर्ड्स। जीते रहिए, खुश रहिए। तो ऐसा है सामीन कि हमारा टाइम हुआ जा रहा है टाइम चेक का और टाइम चेक के बाद हमारा फ्लैशबैक गीत होगा, वो हाजरा जी आपके नाम करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, आप इन्जॉय कीजिएगा। पहले कर लेते हैं टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं सामियन के हुआ चाहते हैं 11:44 और कुछ ही सेकंड में 45 मिनट होने वाले हैं। जी हो गए 11:45, बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब और कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद जी होगी हमारी फ्लैशबैक गीत और फिर होती है आपसे दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन प्राटवट 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
5: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

जब से देखा है तुम्हें ऐसा लगता है मुझे। क्या खूबसूरत गीत आपने सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज रजी उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, आपके नाम किया था ये गीत और उम्मीद है तमाम सुनने वालों ने भी इंजॉय किया होगा जैसे मैंने इंजॉय किया। समीन, अब हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के फर्स्ट आवर के एंड की जानिब। मेरे ख्याल है एक और गीत प्ले करते हैं और फिर उसके बाद हमारा सफ़र होगा खबरों की तरफ। तो जी ये गीत सुनिए, इंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: वेलकम बैक सामीन, हम दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के सेकंड आवर में, यानी कि दूसरे घंटे में। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो, मुझे कहते हैं नाहिद चट्ठा। आपका और मेरा साथ रहता है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 टू 2। पहला प्रोग्राम का आवर आपने सुना सनराइज रेडियो पर 100.6 FM और 103.2 FM अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। आपने ब्रेडफोर्ड में डैप पर सुना, कीतली में सुना, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर, यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी आप सुन रहे हैं। एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो। हमारी वेबसाइट पर यानी कि www.sunrise.radio। तो जनाब गल एवे कि द सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 सेलिब्रेट करेंगे जी बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। ते इन्ना दिन ए करन वास्ते यानी कि आपको वोट करने के लिए अपने फेवरेट बिजनेस को या फिर अपनी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन को या फेवरेट आर्टिस्ट को आपको बनना पड़ेगा सनराइज रेडियो लिसनर्स क्लब का मेंबर। और फिर इससे ये फ्री ज्वाइनिंग होती है, आपको पैसे शैसे नहीं लगते, आजकल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, जो मिलता है ले लें। तो ऐसा है कि ये आप ज्वाइन कर सकते हैं सनराइज रेडियो लिसनर्स क्लब। इससे फिर आप वोटिंग कर सकते हैं कि आपके फेवरेट वेन्यूज़ क्या हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, बिजनेसेस, एंड आप और बहुत कुछ जान सकते हैं जब आप मेंबर बनेंगे। तो समय बढ़ते हैं बगैर किसी ताखीर के अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब। हिट ऑफ द आवर है जी नहर वाले पुल ते, लेकिन ये वो वाला नहीं है सानू नहर वाले पुल ते, वो नहीं है जी, ये डिफरेंट है। सरदोल सकंदर साहिब की आवाज़ में के साहिबा हैं, लेकिन गीत है नहर वाले पुल ते, पंजाबी का गीत है, इंजॉय कीजिएगा।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: सुनो सरपंच साहब, जिन्नी दुखी होके बंदे ने गल कही हैगी आ, मैनू लगता नहर वाले पुल ते पक्का कोई दी पसूरी पई हैगी आ।
1: सानू नहर

0: रुको रुको प्रभु रुको,
1: मेनू वो बंदा गलत लगता हैगी। वो बंदा विरोधी पार्टी का हैगी जरा सारे नैर वाले पुलते बुलाई जाती।

जंगल सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए, बात है शर्म की, जरा गौर से सुनिए। जंगल सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए, बात है शर्म

0: हाँ जी, ये मजाहिया शक्ल आपने नहर वाले पुल दे बुला के सुनी। मैं सारी नहीं सुन पाई क्योंकि हम बात कर रहे थे नदीम मंसूर साहब से। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपकी टेलीफोन कॉल का। आप इतनी इज्जत देते हैं, आप बकायदा टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं और आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगता है। समीन, टाइम हुआ चाहता है टाइम चेक का, और फिर टाइम चेक के बाद नदीम भाई आपकी फरमाइश का गीत भी हम प्ले करेंगे। और इस अगले कुछ गीतों में ही तो उम्मीद है आप सुन रहे होंगे और इंजॉय करेंगे गीत को। पहले कर लेते हैं टाइम चेक और उसके बाद बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी सामने इस वक्त हुआ चाहते हैं 12:16, यानी कि 12:16। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा।
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it won't be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
7: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
8: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
7: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
8: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

जी समीत, आपने सुना कमर्शियल ब्रेक और अब हम बढ़ते हैं एक और गीत की जानिब जो कि है नदीम भाई की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बहारो फूल बरसाओ। उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे नदीम भाई के साथ साथ। हम सब के इंजॉय करने के लिए बढ़ते हैं इस खूबसूरत से गीत की जानिब।

बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना सामीन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने ज़रूर उसको इंजॉय किया होगा। तो सामीन बात कुछ यूं है जी, हम अपने अगले गीत की जानिब अब बढ़ेंगे और जो हमें ले जाएगा ठीक हमारे हाफ एन आवर कमर्शियल ब्रेक की जानिब। बहुत खूबसूरत गीत आज के मौसम के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में है जो है आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ जी, आज मौसम बहुत खूबसूरत है, मौसम को भी एंजॉय कीजिए और गीत को भी एंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं इस हसीन गीत की जानिब।

0: बड़ा बेईमान है जी जनाब, मौसम तो बेईमान है ही, तो क्या कहते हैं ना, कहानी ठीक बनती है, नजारे ठीक बनते हैं, अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। वजह एक दोस्त ये भी है ताल्लुक को बढ़ाने की, कि हम दोनों के आपस में सितारे ठीक मिलते हैं। तुम्हारा यूं मुकर जाना, अचानक यूं बदल जाना, तो मतलब मुझको ख्वाबों में इशारे ठीक मिलते हैं। हमें तो जो मिला अपना, वही डसने में माहिर था, न जाने कैसे लोगों को इशारे ठीक मिलते हैं। मोहब्बत के बड़े हमने अजब दस्तूर देखे हैं, मोहब्बत तो नहीं मिलती, खसारे ठीक मिलते हैं। क्या ख्याल है जनाब, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

दिल लगा लिया मैंने तुझसे प्यार करके, बहुत ही खूबसूरत आपने गीत सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चौधरी मुजफ्फर जी, आपकी कॉल बार बार आ रही है लेकिन जैसे ही मैं उसको अटेंड करती हूँ तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। पहले आप अटेंड हुई और फिर भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो लगता है कोई गड़बड़ेशन फ़ोन लाइन्स में है, लगता है आपकी साइड से ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कॉल्स आ रही हैं और मैं अटेंड भी कर रही हूँ मुसलसल, तो क्या किया जाए। मेरे ख्याल है कुछ उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो सामईन, उम्मीद है आपने गीत को पसंद किया होगा। क्या करें, आपको चंद अशआर सुनाएं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, हाय मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, सहारे बांट खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। जी हाँ, ये फैज़ अहमद फैज़ के चंद अशआर थे, आपने पसंद किए होंगे। जी सामिन, अब हम साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब, मैं तेरी मोहब्बत में। जी हाँ, एंजॉय कीजिएगा।

0: हाँ जी, मुझे तो ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है? जी जनाब, आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना। आयशा जी, आपसे बात हुई, आप अपनी फ्रेंड शबनम के लिए गीत सुनना चाह रही हैं। मैंने जो गीत ढूंढा है वो फ्लैशबैक गीत नहीं है। फ्लैशबैक गीत के बाद वो मैं आपके लिए गीत प्ले करूंगी। आपकी जो फ्रेंड शबनम है वो लंदन में ये प्रोग्राम सुन रही है। हम शबनम जी को हेलो बोलते हैं। और जी, आशा जी ने आपके लिए फरमाइश की है, वो गीत हम अपने फ्लैशबैक गीत के बाद प्ले करेंगे। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। पहले हम बढ़ते हैं अपने टाइम चेक की जानिब, फिर हमारी कमर्शियल ब्रेक, फिर फ्लैशबैक गीत, उसके बाद शबनम जी के लिए गीत। पहले टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी सामेन, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:44, 44 minutes past 12। बढ़ते हैं हम अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब और उसके बाद जनाब होगा फ्लैशबैक गीत। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो। बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free child care courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

हाँ जी, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। ऐसा ही होता है जी, जब कोई दिल पर छा जाता है तो अंग अंग मुस्का जाता है। जी आयशा जी, आपकी फ्रेंड के लिए शबनम जी, जो कि लंदन से हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनके लिए गीत अब हम प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको सबको याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो, और बहुत से ऐसे, क्योंकि हमारी नई जगहों से नशरियात स्टार्ट हुई हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जानते हमारा टेलीफोन नंबर, जो कि स्टूडियो में कॉल करने के लिए है, वो है 01274, जो कि ब्रेडफोर्ड का कोड है 306666। ये है हमारा स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274306666 पर। जी आयशा जी, ये लीजिए आपकी फ्रेंड शबनम जी के लिए गीत। शबनम जी और तमाम सुनने वाले, उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे इस गीत को। बढ़ते हैं इस गीत की जानिब।

0: जी हाँ, मैंने प्यार तुझे से किया है। अच्छा, और किनो किनो क्या होएगा, है ना? आपस की गल है जी। चौधरी मुजफ्फर जी, आपसे बात हुई इस गीत के दौरान, आपसे बात करके हमेशा की तरह अच्छा लगा, लेकिन आपने एक सैड न्यूज़ दी है। तमाम सुनने वाले भी जानते होंगे, महबूब इलाही साहब जो हमारे बहुत अच्छे लिसनर्स भी हैं, रेडियो प्रेजेंटर भी रहे हैं, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं तमाम लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी वालदा के लिए दुआए खैर कीजिए, कुछ फातिहा पढ़ दीजिए, और अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, और महबूब इलाही साहब को और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमामीन। बस ये क्या करें, ज़िंदगी के यही ताने बाने हैं। लोग बिछड़ते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका खला कभी भी पूरा नहीं होता, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है माँ के रिश्ते का। तो बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनका साया हम सब पे कायम रखे, अपनी अपनी माओं का, और जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। थैंक यू सो मच चौधरी मुजफ्फर जी, आपने हमें इतला दी। बहुत से लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए दुआ करेंगे। तो सामीन, अब जी इस घंटे का भी इख्तिताम हुआ चाहता है, बल्कि एक मिनट रह गया है। तो इस एक मिनट के बाद हम खबरों की जानिब बढ़ेंगे। खबरों के बाद जनाब फिर हमारा जो लास्ट आवर होगा वो हमारा होगा डिस्कशन आवर। डिस्कशन आवर में आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो बात यूँ है कि हम सब के, जिस तरह से आज अभी मैंने आपको न्यूज़ सुनाई लॉस की, हमारे लॉसेस हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हमें कोई परेशानी मिल जाती है, हमें धोखा मिल जाता है, हमें नुकसान हो जाता है, कारोबार में ज़ाती नुकसान, चीज़ें, कुछ भी, तो उससे हमें अपने आप को निकालना किस तरह चाहिए, हमारी किस तरह से सोल की, हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग हम किस तरह से करें, आपका क्या ख्याल है? कुछ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी हीलिंग करते हैं, कुछ अपने उस बारे में बातें करके, कुछ दूसरों से बात करके, कुछ तन्हाई में जाके, कुछ लोग इबादत करके, कोई लोग शिकवे करके, कई लोग भुला के, कुछ भी तरीके से अपनी हीलिंग करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। तो समय इसके साथ ही मैं बढ़ूंगी न्यूज़ ब्रेक की जानिब। न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ के फौरन बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 1. Prosecutors from the United Arab Emirates say a Fly Dubai co-pilot accused of trying to crash a plane attacked the captain with an axe in an attempted terrorist attack. It's also emerged suspect Hamam al-Hamami completed a distance learning course in aviation management at Buckinghamshire New University. The aircraft was forced to make an emergency landing on Wednesday. Our international correspondent Alex Rossi says it raises wider security questions.
3: It's my understanding that on a 737 MAX, it would be in the flight deck, the cockpit. So the co-pilot and the pilot would have had access to it. It would have been there in case of emergency, in case they needed to break down the door or something else in the case of a crash. But it would have legitimately been on board.
2: Two Iranian nationals have appeared in court accused of preparing acts of terror in Manchester ahead of a Jewish festival. The pair were detained over an alleged plot to target the community. A UK-Iranian dual national arrested in connection to an incident at RAF Fairford has been released on bail. The 25-year-old was detained on Thursday. It's hoped we'll soon start to see the impact of leading G7 nations releasing stockpiles of up to 100 million barrels of diesel and crude oil. Yesterday's agreement follows pressure from Donald Trump on a potential export ban, which he's since ruled out. Mike Cohen heads the National Federation of Fishermen's Organisations.
4: We are losing businesses and we're losing jobs and we're losing our capacity to produce our own food as a nation. Once we lose fishermen, once they lose jobs on boats and have to look for work elsewhere, once fishermen can't afford to keep running boats and have to sell up their businesses, we won't get them back.
2: The King won't apologise for slavery when he visits the Caribbean later this year, but Buckingham Palace insists Charles won't shy away from discussing the issue. And last night's episode of Celebrity Traitors hit a peak of 8.6 million viewers. The second show saw Amal Rajan murdered by Maya Jama and Richard E. Grant. That's the latest. I'm Faye De Silva.
0: वेलकम बैक सामीन, हम प्रोग्राम के लास्ट आवर में, लास्ट घंटे में, आखिरी घंटे में दाखिल हो चुके हैं और ये घंटा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हुआ करता है हमारा डिस्कशन आवर। इस डिस्कशन आवर में हम आज बात करेंगे अपनी हीलिंग की, अपनी अंदर की हीलिंग की। जैसे हमें कोई, हमारी जो रूह को ज़ख़म लग जाए, हमें कोई दुख हो जाए, हमारी मेंटल हीलिंग की हम बात करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा 01274306666 पर। तो ये जो, अगर आप कुछ शायरी पढ़ना चाहें लेकिन उसका टॉपिक यही होना चाहिए कि किस तरह से गिला शिकवा या करके या किसी तरह से नुकसान के बारे में बात करके अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें, जब भी आप कर सकते हैं। तो समीन, ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं डॉक्टर निगत नसीम की लिखी हुई एक तहरीर पढ़ूंगी। उम्मीद है आप भी, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ जब मैंने पढ़ी, तो वो भी आपके गोश गुजार करूंगी। पहले हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तारुफ की जानिब। जी हाँ, मैं हूँ नाहिद चट्ठा। मेरा प्रोग्राम आप सुनते हैं एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 106 FM एंड 103.2 FM अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। और डैप पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर, यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी। जनाब, आप हमारी नशरियात डैप पर सुन रहे हैं। ऑनलाइन आप हमें सुन सकते हैं, वेबसाइट है www.sunrise.radio। और समीन, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर आप फैंसी कर रहे हैं बिट ऑफ फन, आपको विजिट करना पड़ेगा सनराइज रेडियो प्ले। जी, उसमें आप करेंगे हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश, सेट योर टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज, यानी कि बॉलीवुड क्विज होगा, और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर, आप कौन से बॉलीवुड कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं। प्ले नाउ एट sunrise.radio एंड जॉइन द फ्री सनराइज लिसनर्स क्लब टू अनलॉक इवन मोर। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सनराइज लिसनर क्लब के मेंबर बनिए, जो कि बिल्कुल फ्री है जी। फ्री खाते में आप बन सकते हैं सनराइज रेडियो लिसनर्स क्लब के मेंबर। तो जनाब, हम पहले बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब और फिर उसके बाद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे और कुछ बातें करेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं स्टूडियो में, अगर आप हमें करना चाहें तो 01274306666 पर।
5: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी समीन, सॉरी हम गीत को स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आयशा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा।
1: वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक ठाक। आप प्रोग्राम सुन रहे थे?
1: जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हमेशा ही प्रोग्राम।
0: बहुत शुक्रिया आयशा। मैंने इसलिए पूछा कि आप प्रोग्राम सुन रहे थे ताकि मुझे पता चले कि आपको टॉपिक का पता है कि हम आज बात कर रहे हैं इस पे कि अपने सेल्फ हीलिंग पे, जब हमें कोई नुकसान हो जाए, जब हम परेशान हो जाएं या हमें कोई दुख मिले तो हम किस तरह से अपने आप को हील करें। और मुझे पता है आप उसके मुताबिक शायरी लेकर आए होंगे।
1: जी जरूर। पहले तो मैं आपको, सुनने वालों को सलाम देती हूँ। आपकी आवाज आ रही है?
0: जी मुझे तो आपकी आवाज आ रही है।
1: जी पहले तो मैं आपको और सब सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम देती हूँ जो प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, टॉपिक जो आप लेके आती हैं वो भी बहुत अच्छा होता है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: आज टॉपिक लेके आए हैं ये तो हमारे मसाइल हैं, जिधर जिधर भी लोग हैं इनके मसाइल।
0: हर बंदे के दिल की आवाज है जी, क्या कहिए।

0: इंसान को ऑटोमेटिक सब्र आ जाता है
1: जी।
0: बाकी है कि अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है या बेवफाई करता है तो
1: हाँ जी
0: इंसान को हमेशा तकलीफ देती है।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे ख्याल से हम जैसे एज ए मुसलमान हैं

0: अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है।
1: हाँ जी।
0: इज्जत उसके लिए रखी है जो डिवोर्स है, इज्जत उसके लिए है तो शादी शुदा है।
1: जी जी।
0: अगर बेवा हो जाती है या उसकी डिवोर्स हो जाती है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। वहाँ भी अल्लाह ताला ने औरत पर नरमी दिखाई है, अल्लाह ताला ने औरत को महफूज किया है। जब अल्लाह ताला ने औरत का एक आदम करा कर दिए कि 3 महीने 4 महीने इज्जत के बाद निकाह करे अपनी जिंदगी, ये फिर हम कौन होते हैं उसी गम को सदियों साल लेकर जीने चलने वाले।
1: हाँ नहीं, लेकिन ये तो है ना कि हमारे अंदर हर बंदे का हीलिंग टाइम जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। आयशा जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एवरी पर्सन, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी होती है कि वो जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, अपने आप का दिल बहला लेते हैं। कई लोग सदियाँ लगाते हैं। आपको पता है क्वीन विक्टोरिया द फर्स्ट, वो उनके जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उन्होंने सारी उम्र काले कपड़े पहने थे, उसके बाद कभी भी उन्होंने कलरफुल कपड़े नहीं पहने। दिस वॉज हर ओन चॉइस। तो ऐसा होता है, कई लोग ओवरकम कर जाते हैं, कई लोग सारी उम्र ओवरकम नहीं कर पाते। तो हमें
0: गम तो ऐसा चीज है कि वो गम इंसान को रहनुमाई देता है, इंसान को कॉन्फिडेंस देता है। कुछ लोग उस गम में खुद अपना कर लेते हैं, कुछ लोग उससे बेहतर रास्ता तलाश कर लेते हैं।
1: ये बात तो है।
0: मेरा जो मैं अपना पहले बोला है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू,
1: बिल्कुल बहुत ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इससे ज्यादा अहमियत रखती है आपकी शायरी, क्योंकि हमारी ब्रेक का टाइम होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में अपनी शायरी सुनाएं। टाइम बहुत कम होता है, हमें सब लिसनर्स को टाइम देना पड़ता है और सभी हमारे लिए इक्वली अपॉइंटमेंट है।
0: उससे रिलेटेड मैं शायरी कुछ सुना देती हूँ।
1: जी प्लीज।
0: दिल तोड़ के कहते हैं ये उदासी कैसी, सुनाओ कैसे हो।
1: हो
0: दिल उजड़े उजड़े बाग कब दोबारा बसते, ये तुम बताओ। दर्द की शिद्दत क्या है जो हम दे के पूछते हो, तुम ये हमदर्द कैसे हो। अभी तो टूटे दी की खिचियां ही समेट पाई थी, मुस्कुरा के कहते हो हमारी मंजिलें जुदा, हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, तुम ये हम नवा कैसे हो।
1: हाय हाय।
0: जब जाना ही था इतने करीब आई क्यों थे, तुम ये बेवफा कैसे हो। सुनते जाओ दोबारा कभी ना इस मोड़ पर मुझे पाओगे जहाँ छोड़ के जा रही हो।

0: आज से तुम भी मेरे लिए अजनबी हो, रोजे अशर भी अगर मिल गए तो खुदा से कह देंगे तुम मेरे मुजरम हो।
1: हाय हाय क्या बात है जी, बहुत अच्छी
0: शायरी मैंने खुद लिखी है,
1: बहुत ही कमाल शायरी है, ख्याल बहुत अच्छा है और इसमें नजर आता है कि हम फील कर सकते हैं, इसमें एंगर भी है, दुख भी है और मायूसी भी है। तो मुझे पता था आयशा जी, मैं इसीलिए फौरन कह रही थी कि शायरी भी आए, मुझे पता था आपके पास बहुत ही अच्छा कोई पीस होगा लिखा हुआ। वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा लिखा।
0: बहुत प्यारी बहन है जो लंदन में है, मैं शायरी उनके लिए सुनाना चाहती हूँ।

0: बेशक
1: रो रो कर गुजारने की चीज नहीं है, इसे एंजॉय करो।
0: बहुत अच्छा पैगाम,
1: जिंदगी का भी हिसाब लेगा कि हमने जिंदगी दी थी, आपने क्यों नहीं उसे अच्छे तरीके से।
0: जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पैगाम आपकी फ्रेंड को भी और तमाम ऐसे सुनने वालों को भी जो परेशान बैठे हैं। बट टाइम चेक करते हैं सामीन, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आयशा जी हमारे साथ थी और बहुत ही अच्छी बातें भी उन्होंने की और बहुत अच्छी शायरी भी सुनाई। तो आप लोगों के लिए भी टेलीफोन लाइन्स खुली हैं, आप भी फ़ोन कर सकते हैं 01274306666 पर। पहले करते हैं जी टाइम चेक।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:16, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, इसके बाद मिलते हैं दोबारा।
3: Sunrise Radio.
2: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3535. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Sunrise Radio.
0: जी हाँ समीन, आपने सुनी कमर्शियल ब्रेक और उससे पहले हमने सुनी आयशा जी की अच्छी अच्छी सी बातें और उनका पैगाम, उनकी शायरी। दैट वाज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच आयशा जी टेलीफोन कॉल करने का और हमारे लिसनर्स के साथ अपने ख्यालात को शेयर करने का। आपका पॉइंट ऑफ व्यू से हम 100% एग्री हैं। सब लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हर एक का हीलिंग का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप में से लिसनर्स में से कोई टेलीफोन करना चाहे और अपने ख्यालात का इजहार करना चाहे तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा 01274306666 पर। जब तक आपके साथ मैं शेयर करती हूँ इसी बारे में, हमारी डॉक्टर निगत नसीम जो कि दो प्रोग्राम्स में हमारे साथ रहीं, जिनका जो कि डॉक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने वो नारकोटिक्स की डॉक्टर हैं, जो लोग नशे की लत में लग जाते हैं उसकी मेनली डॉक्टर हैं, उसके अलावा राइटर हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स की जर्नलिस्ट हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबियां हैं उनमें और उन्होंने बहुत खूबसूरत तहरीर लिखी जो कि मैं उनकी इजाज़त से आप तक पहुँचाती हूँ। कहती हैं कि शफा मीन हीलिंग, जो हम कहते हैं ना अल्लाह आपको शफा दे, शफा कतरा कतरा उतरती है। इंसान के जिस्म पर लगने वाला जख्म दिखाई देता है, इसलिए हम फौरन उसकी मरहम पट्टी करते हैं, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते। किसी जुदाई का दुख, किसी रिश्ते की चोट, किसी की कही हुई बात, कोई नाकामी, खौफ, पछतावा या बरसों पुरानी याद, ये सब हमारे अंदर कहीं खामोशी से मौजूद रह सकते हैं। शिफा का पहला कदम यही है कि अपने दर्द को तस्लीम किया जाए। हम अक्सर अपने आप से कहते हैं मुझे मजबूत रहना चाहिए, मुझे इस बात को भूल जाना चाहिए, इतना वक्त गुजर गया अब मुझे दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल कैलेंडर के मुताबिक ठीक नहीं होता। अपने दर्द को तस्लीम करना कमजोरी नहीं है, कभी खामोशी से अपने आप से ये कहना भी काफी होता है, हाँ मुझे तकलीफ हुई है, हाँ इस वाकये ने मुझे बदल दिया है, और हाँ मुझे ठीक होने के लिए वक्त दरकार है। यही से हीलिंग यानी शफा का सफर शुरू होता है। माफी दूसरे के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए, यानी कि किसी को माफ कर देना किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने सुकून के लिए होनी चाहिए। कुछ जख्मों के साथ नाराजी भी जुड़ी होती है। हम बरसों किसी शख्स, किसी वाकये, बल्कि कभी खुद अपने आप से नाराज रहते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो दुरुस्त था, ना ही इसका मतलब ये है कि हम दोबारा इस तकलीफ दे सूरत हाल में वापस चले जाएं। माफी कभी कभी सिर्फ इतनी होती है कि हम फैसला करते हैं कि मैं इस वाकये को अपनी जिंदगी, अपनी बाकी जिंदगी पर हुकूमत नहीं करने दूंगी या करने दूंगा। और सबसे मुश्किल माफी शायद खुद को माफ करना है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं पहले समझ जाती या समझ जाता, काश मैंने वो फैसला ना किया होता। मगर उस वक्त का हमारा वजूद, उस वक्त की अपनी समझ, हालात और जज्बात के मुताबिक फैसले कर रहा था। आज की दनाई से कल के अपने आप को सजा देते रहना भी तो एक तरह की नाइंसाफी है ना। अपने दिल को कागज पर रख दीजिए। डायरी लिखना अंदरूनी सफाई का एक खूबसूरत तरीका है। रात को सिर्फ चंद मिनट निकाल कर लिखिए, आज मैंने क्या सोचा, मुझे किस बात ने खुश किया, किस बात ने मुझे तकलीफ दी, मैंने अपने बारे में क्या महसूस किया, और ऐसी कौन सी बात है जिसे मैंने आज के दिन के साथ ही छोड़ देना चाहती हूँ। हर तहरीर खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, मुकम्मल जुमले भी ज़रूरी नहीं। ये किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को सुनने के लिए हैं। कभी कलम वो बात लिख देता है जिसे ज़बान मुद्दतों से कहने से डर रही होती है। खामोशी, सांस और ध्यान। दिन में चंद मिनट अपने लिए रुक जाना भी शिफा है। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, सांस को आहिस्तगी से अंदर आने दीजिए और फिर आहिस्ता से बाहर जाने दीजिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि जिस्म का तनाव कुछ कम हो रहा है। हम सारी दुनिया से बात करते हैं मगर कभी कभी अपने अंदर की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। ध्यान या मेडिटेशन में दोबारा अपने वजूद को करीब जो होता है वो अब दोबारा अपने वजूद को करीब ले आता है। शिफा बर्फ़ के पिघलने की तरह है। मुझे अंदरूनी हीलिंग बर्फ के पिघलने जैसी महसूस होती है। बर्फ एकदम पानी नहीं बनती, पहले एक कतरा गिरता है, फिर दूसरा कतरा गिरता है और फिर तीसरा। जैसा मैंने इसके साथ ही हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है
0: जी, ठीक ठाक। आप ऑन एयर हैं, आपको मालूम है?
6: जी मुझे पता है
0: जी। वेरी गुड, थैंक यू। कौन और कहाँ से?
6: मैं साइमा हूँ, सलाह से।
0: साइमा सलाह से, थैंक यू वेरी मच। इतनी दूर से आप हमें फोन कर रही हैं, कैसी हैं आप?
6: क्योंकि मेरी दोस्त आशा ने अभी मुझे बताया तो मैंने कहा चलो मैं आपसे कॉल करके बात कर लेती।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साइमा जी।
6: आप कैसे? ठीक है,
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी?
6: मैं उसी टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, वो जैसी बात है कि मर्द अगर छोड़ के चला जाए। मैं कहती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही पढ़ना, लेकिन मैं ये कहती हूँ मर्द अगर छोड़ के जाता है तो उसको जाने दे, खाली वाली करे, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। तकलीफें भी आती हैं, दुख भी आती हैं, परेशानी भी, सब मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। हमारे नसीब में जो लिखा होता है ना, जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारे नसीब में लिखा जाता है।
0: बिल्कुल ठीक बात, आपने बहुत अच्छी बात की है। सिर्फ हमें, अगर हम इस बात को और थोड़ा सा वाइडर ले जाए ना, तो हमें ये कहना चाहिए कोई अगर हमें छोड़कर चला जाए, ठीक है ना,
6: हाँ,
0: तो ये बात फिर सारे, बिल्कुल
6: माँ बाप भी आए दुनिया में, सब सबसे प्यारा रिश्ता हमारे माँ बाप का, ठीक है ना?
0: जी, जी,
6: वो आए, हम उन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, वो हमें छोड़ के दुनिया में चले गए, हम उनके बगैर जी रहे हैं।
0: बिल्कुल।
6: तो ये दूसरे तीसरे तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो हमारे सामने कुछ भी, ये तो हमारे सामने एक छोटी सी चीज है।
0: बिल्कुल सही है।
6: इन चीजों को कभी भी अपने पर हावी नहीं करती, मैं अपने को फोकस करती हूँ कि मेरी जान मुझे क्या कह रही है, मेरी जिंदगी मुझे क्या कह रही है, मेरा अल्लाह मुझे क्या कह रहा है, दैट्स इट। मैं काम पे जाती हूँ, घर आती हूँ, घर भी सुबह मर्द बन जाती हूँ, शाम को औरत बन जाती हूँ। ये दो चीजें मैंने अपने में अंदर रखी हुई
0: हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने की हैं कि वाकई आपको अपने आप को समझाना चाहिए, यानी कि हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी आपने बात की है कि आप अपने आप को डिफरेंट रोल्स में देखें कि मेरा ये रोल इस टाइम है, मैं ये इस टाइम इस तरह से हूँ, और एक रोल को दूसरे पे अफेक्ट ना होने दें, अपने आप को बेचारा ना समझें।
6: जब आप अपने आप को उस शख्स के सामने बेचारा शो करेंगे तो समझे आप अपने आप को बहुत अपनी नजरों में गिरा रहे हैं उसके सामने। आप अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को और ऊंचा करें, आप बताएं कि जहाँ पे तू छोड़ के गया था, जिस जगह पे छोड़ के गया वो जगह अभी मैंने पूर कर दी, उससे मैंने और आगे निकल गई हूँ, और मैंने वही किया, मैं उससे बहुत आगे निकल गई हूँ माशाल्लाह। दुनिया की हर चीज है, मैं टूर करती हूँ, मैं ट्रेवलिंग करती हूँ माशाल्लाह, मैं काम करती हूँ, मैं शेफ भी हूँ, मैं बच्चों को भी संभालती हूँ, घर को भी संभालती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने अपने आप को बहुत अपग्रेड, मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपना सहारा चाहिए, मुझे अपने आप को
0: अल्लाह का सहारा चाहिए। बिल्कुल
6: अल्लाह का सहारा चाहिए, और मुझे अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ हर दिन, हर टाइम कहने का मैंने आज इस तरह रहना है और इस तरह चलना है, तब मेरी सेहत अच्छी होगी।
0: बिल्कुल
6: करना है तब।
0: आपने अपना नाम सायका बताया या सायमा?
6: सायमा जी
0: सायमा जी, मेरे जहन से निकल गया था। ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात की है कि अपने आप को समझा लिया है आपने, आपने मूव ऑन कर लिया है। मूव ऑन एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, हमें जो लोग कामयाब होते हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा ये बड़ी क्वालिटी मौजूद होती है मूव ऑन करने की, कि हाँ जी, क्योंकि जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते ना, तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स से भी ये बात किया करती हूँ कि आपने अगर आगे बढ़ना है तो पीछे से पाँव उठाना पड़ेगा, जब भी आप आगे रख सकेंगे। आप अगर अपना पाँव पीछे रखते हैं तो
6: फिर करें कि आप उस चीज़ को इस तरह करें जिस तरह आपने फ्रीजर में रख दिया, बस फ्रीजर में रख दे,
0: फ्रीज कर दे। हाँ जी, बस
6: वो आपको तकलीफ भी नहीं देगी, आपको ना कोई कैंसर लगेगा, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना शुगर की प्रॉब्लम। माशाल्लाह, ना मुझे शुगर है, ना मुझे हार्ट।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, आमीन।
6: कुछ भी नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने करके दिखा दिया, मैंने अपने बहन भाइयों को नहीं बताया कि मेरे को ये तकलीफें भी हुई हैं।
0: जाहिर बात होती है,
6: जागी भी हूँ, सोई भी हूँ, खाया भी नहीं है। ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ, पर बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन मैंने उसको साथ लेके चली, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने लोगों को भी अपने साथ किया, लोगों को भी मैंने
0: बहुत अच्छी बात है
6: ट्रेंड किया माशाल्लाह, वो भी मेरे से आगे निकल, वो मेरे से भी आगे निकल। मैंने कहा देखो,
0: बहुत अच्छी बात है,
6: कहते हैं जिंदगी।
0: बिल्कुल यही जिंदगी है, क्योंकि किसी की भी जिंदगी सायमा जी आसान नहीं है। हर एक की जिंदगी में दुख परेशानियां हर एक की जिंदगी में हैं, और हमें ज़रूर मूव ऑन करना चाहिए। और हमें स्ट्रेटजीज, हर एक की अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, कई लोग किस तरीके से मूव ऑन करते हैं, कई लोग अपने आप को मसरूफ करके करते हैं, लेकिन आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी।
6: वो लोग जिनसे मसरूफ नहीं होते ना, वो ज्यादा
0: परेशान हो जाते हैं। हाँ जी,
6: मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि ओ जी आपने ये करना, आप जॉब भी ढूंढे साथ, आप घर के काम को भी देखें, आप घर के छोटे छोटे काम निकालें, आपको स्टिचिंग का काम शुरू कर दे, आपको कुकिंग नहीं आती, आप कुकिंग का काम गूगल जो यूट्यूब पे जाए, आप बोले आज मैंने ये बनाना है, आप जब अपने जहन को इस तरफ लेके जाएंगे आपको वो पीछे बातें बिल्कुल भी याद है। शुरू दिनों में मेरे से एक महीने हुआ था, मैंने किक आउट किया, मैंने कहा दफा मैंने अपनी जिंदगी को पीछे क्यों करना है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सायमा जी, बहुत जज़ाकल्ला। जल्दी से सुनाइए क्योंकि हमारी टाइम हो चुका है हमारे ब्रेक का, लेकिन आपके लिए आपका पहली बार फोन आया, एक शेर सुना दीजिए, बढ़ते हैं।
6: लेकिन मेरे पास दो शेर है, लेकिन एक मेरी उसी आशा ने भेजा, उसका नहीं मैं अपना सुनाती हूँ।
0: जी कहिए।
6: ख्वाबों में आना छोड़ दे, ये हंसी मजाक वाला है, ये उसकी तरफ नहीं है।
0: नहीं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है तो जरूर सुनाइएगा, अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो फिर।
6: अच्छा चलो, अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, कौन सा हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ भी बर्बाद थे, तुम्हारे बाद भी बर्बाद।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेलीफोन कॉल, अल्लाह हाफिज, बाय बाय जी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी नशरियात अब लंदन में भी सुनी जाती हैं, हमारे साथ कॉलर्स मौजूद होते हैं लंदन से भी, और बहुत शुक्रिया साइमा जी टेलीफोन कॉल करने का, आप वहाँ पे हमें सुन रही हैं और आपने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, क्योंकि देर हो चुकी है एक मिनट ऊपर, तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आशा जी को, सॉरी साइमा जी को कैसे मना करते जी, दिल नहीं करता था। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिएगा।
3: सनराइज रेडियो, तेरी
7: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
8: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
7: चाचा केड़ा चाचा?
8: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
7: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
8: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
9: समथिंग न्यू इज कुकिंग एट जिना रेस्टोरेंट, कम एंड discover our exciting new menu packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste and something new.

0: जी समीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं अजीज पाकिस्तान गुजरात से, वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैर और खैरियत से हूँ। आप सुनाए, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपका टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है?

0: करूँगा।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: और हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, मेरा बड़ा प्यारा रिश्ता है उनके साथ, वफादारी दोस्ती का, तो परवेज खान साहब उनका नाम है। तो उनसे भी ना कुछ अच्छा पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, तो मैंने उस बंदे का हौसला देखा है, उस बंदे ने फाइट की है
1: जी।
0: और मैं उनको सराजे तस्लीम पेश करने के लिए मैंने आपको यकीन करें कॉल की है, वो इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके गम और खुशी ये दोनों लाजमो मलजूम है।
1: बिल्कुल ऐसा है,
0: ये हर इंसान का मुकद्दर है दोनों चीजें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो हम उन्हीं की औलाद हैं, पूरी कायनात उन्हीं से चली है, और जब उन पे हम और खुशी के अय्याम आए हैं तो हम कौन होते हैं कि हम पे ना आए। ये हम पे जरूर आएंगे, लेकिन हमने इनका मुकाबला किस तरह करना है,
1: जी
0: गम हो या खुशी हो,
1: बिल्कुल
0: इनका मुकाबला। देखिए अगर गम आ गया है, परेशानी आ गई है,

0: तो सलामती आप मर गए हैं और आपने उस मरने के बाद आपने उस यानी मरने से मुराद ये है कि इतनी तकलीफ आई है, इतनी परेशानी आई है, तो आपने उसको सब्र के साथ मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत को आपने अपने ऊपर इस तरह इसको समझा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह मिटाने वाला है
1: जी।
0: तो आप मर भी गए तो आप यकीन करें कि वो आप जिंदा हुए हैं, मुसीबत जो भी आई है उसके बाद आप जिंदा हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शहीद है ना, तो वो शहीद उनको जिंदा क्यों कहते हैं कि उनको जुल्म की इंतहा पे उनको मारा गया है।
1: बेशक
0: तो जब वो दुनिया से गए हैं तो वो देखने वाले जिन्होंने मारा है वो समझते हैं कि हमने मार दिया है, वो तो जिंदा हो गए हैं। उन जाहिलों को तो ये पता ही नहीं है। तो जिस इंसान में भी तकलीफ आती है अगर वो ये समझे कि इस तकलीफ के बाद जरूर आसानी आएगी, मुझे जरूर खुशी मिलेगी, तो यकीन करें बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ भी वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाला गया तो आपने बैतुल शरीफ की तरफ उंगली करके इशारा करके फरमाया था कि मैं इधर से जाना नहीं चाहता था लेकिन ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं इधर से जा रहा हूँ। और जब आप उधर से गए हैं और मदीना वालों ने आपको इस उरूज की बुलंदियों पे पहुँचाया, एक तकलीफ आई है दूसरी तरफ खुशी की वो इंतहा है कि जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा था, उनका जवान बेटा किसी हादसे में इस दुनिया से चला गया लेकिन उस बंदे ने इतनी फाइट की है कि आज वो खुश है। वो किस बात है कि उसने उस जुल्म का और उस अंधोनाक जो उनका पाया पेश आया था बड़ी सबरी के साथ और बड़ी जवान मर्दी के साथ उसका मुकाबला किया
1: है।
0: तो मैं उनको सलूट करता हूँ। तो मैं मेरी तमाम जितने भी कॉलर्स हैं जो जो हमें सुन रहे हैं उनसे मेरी यही दिली रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए जिंदगी में जब भी कोई परेशानी तकलीफ को दुख आ जाए तो उसको अपने पे सवार ना करो, सवाए अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सरे हम तस्लीम कर दो, अल्लाह ताला उस गम के बदले में आपको बहुत ही खुशियों से नवा देगा।
1: बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात, मजा आ गया बात सुन के। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे, बहुत शुक्रिया।
0: आमीन आमीन।
1: अल्लाह हाफिज़ जी। जी सामीन, ये तो अज़ीज़ भाई की जो कि पाकिस्तान गुजरात से हमें फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की। इस पे तबसरा करेंगे कि अभी अज़ान ब्रेक का टाइम हो चुका है, अज़ान के बाद तो इस पे हम ज़रूर तबसरा करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अज़ान की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
2: जी सामीन, आपने सुना अजान सुनी और उसके बाद हमारी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद टाइम चेक करते हैं और हम बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रुखसार साहब, लेकिन हमें फ्लैशबैक भी प्ले करना है। फ्लैशबैक की चंद लाइनें सुन के फिर हम चौधरी रुखसार साहब से सेम टॉपिक पर उनके ख्यालात सुनेंगे। सबसे पहले करते हैं टाइम चेक।
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 1:46, 46 minutes past 1। बढ़ते हैं फ्लैशबैक की जानिब और फ्लैशबैक की चंद लाइनें सुनते हैं और फिर चौधरी रुखसार साहब से उनके ख्यालात सुनते हैं।
4: द क्लासिक फ्लैशबैक इज ब्रॉट टू यू बाय चाचा ज्वेलर्स ब्रैडफोर्ड। चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी। चाचा ज्वेलर्स, 97-99 ओक लेन, मैनिंगहम, ब्रैडफोर्ड, BD94QU। कॉल 01274-488-935.

0: जी हाँ सामीन, अल्लाह ही अल्लाह किया करो नाहिद अख्तर की आवाज़ में हमने चंद लाइनें सुनी इस गीत की। ये थी हमारे चौधरी मुजफ्फर साहब की फरमाइश पर। चौधरी मुजफ्फर साहब जी हमारे साथ, चौधरी रुखसार साहब भी मौजूद हैं, सारे चौधरी आगे ने की करिए जी। हमारे साथ चौधरी रुखसार साहब मौजूद हैं, उनकी इसी टॉपिक पर उनसे गुफ्तगू सुनते हैं कि वो क्या उनके ख्यालात हैं इसी टॉपिक पर कि अपनी सेल्फ हीलिंग, परेशानी से निकलना, कोई नुकसान हो जाए उससे निकलना किस तरह से निकला जाए। और चौधरी मुजफ्फर जी ये जो गीत है वो मैंने आपके नाम किया और आपके तमाम दोस्तों के नाम, उम्मीद है आपने पसंद किया होगा, नेक्स्ट टाइम आपको ये गीत पूरा सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी रुखसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
1: जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मोहतरमा मुकरमा मुअज़्ज़मा, मेरे लिए नहायत काबिले इज़्ज़त, काबिले एहतराम और काबिले इज़्ज़त और हर दिल अज़ीम शख्सियत बाजी नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात एंड वेरी गुड आफ्टरनून।
0: थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम।
1: माशाल्लाह आपकी आवाज़ परफेक्ट आ रही है, तो मेरी आवाज़ आप तक या आपके समातों तक ठीक पहुँच रही है?
0: बहुत बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, गुड क्वालिटी।
1: सबसे पहले तो मैं नाचीज की तरफ से आपकी सनराइज की पूरी टीम को और माशाल्लाह इतनी रोशन समाज से जहाँ जहाँ तक आपकी रेडियो की आवाज़ जा रही है सभी को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा, चाहत भरा, उल्फत भरा, नायत अकीदत से मोहब्बतों भरा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और यकीन करें कि मैंने अभी अभी आपको, क्योंकि मैं सुन अभी अभी रात था लेकिन मुझे पता था आपका टाइम कब शुरू होता है, लेकिन काम की वजह से मैं बिजी इतना था कि आपका पूरा प्रोग्राम तो नहीं सुन सका, लेकिन माशाल्लाह हमारी मोहतरमा हमारी प्यारी बहन आई थी सैमा जी मेरे हले और उनके बाद ये मोहतरमा भाई आए थे जनाब
0: अजीज भाई गुजरात से,
1: भाई माशाल्लाह, तो इन दोनों को ही मुझे सुनने का शरफ हासिल हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही थी और माशाल्लाह जो टॉपिक आपने मुझे अभी से बताया और मुझे वल्लाह बख्शा यकीन करिए मुझे पता ही नहीं था कौन सा टॉपिक है, लेकिन उनकी बातें जब मैं सुन रहा था ना तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बातें माशाल्लाह। तो अभी आपने जब फरमाया कि ये टॉपिक है, तो जब आपने हुक्म दिया मैंने बोला तो वैसे बातें तो सारी हो गई हैं तो अब मैं इसमें को कहते हैं ना कि क्या बयान करूँ, जब वो कहते हैं कि एक गांठ लग चुकी है पूरे प्रोग्राम की, तो अब लेकिन आपका हुक्म मेरे लिए वाजिब था तो इसलिए मैं भी हाजिर हो गया।
0: आप हमेशा इतनी अच्छी बातें करते हैं चौधरी रुखसार साहब, जब आप ऑफ एयर बात कर रहे होते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जो बात है ये सारे लिसनर्स भी सुने, इससे मैं अकेली मुस्तफ़ीद ना हूँ मेरे तमाम लिसनर भी मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि आपकी बातें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं।
1: ये तो आपकी जरा नवाजी है, ये आपकी मोहब्बत है जो आप मेरे जैसे छोटे से तालिबे इल्म को इतना यानी कि मोहब्बत देती हैं कि ये मुझे काबिल समझती हैं, लेकिन यकीन करें कि मुझसे हजारों दर्जे बल्कि करोड़ों दर्जे जो मुझसे पहले हस्तियां आ चुकी हैं ना उन्होंने वो इस टाइप की जो बात की है ना यकीन करें अब मेरा बोलना वो कहते हैं ना कि बिल्कुल समझे तो फजूल ही है मेरे जैसे छोटे से तालिबे
0: इल्म। नहीं नहीं नहीं कैसी बातें करते हैं।
1: तो माशाल्लाह जैसे आपने फरमा रही थी कि दुखों का यानी कि इस मुसीबत से निकलने और दुख किस तरह के होते हैं कि दुनिया में जो कहते हैं ना कि दुख जो होते हैं ना वो हर तरह के दुख होते हैं, कुछ दुख होते हैं कुछ अपनों के दुख दिए होते हैं, कुछ होते हैं बेगानों के दुख दिए होते हैं, कुछ होते हैं अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आता है के हाल।
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही है ना
0: जी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है।
1: कैसे वो भी मोहतरमा फरमा रही थी हमारी सिस्टर बहुत प्यारी बातें कर रही थी कि वालदैन का चला जाना या औलाद का चला जाना या दोस्त का चला जाना ये अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला जो जिंदगी अता की होती है ना, क्योंकि कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है और हर इंसान को शैब शऊर को पता होता है कि जिंदगी से पहले अल्लाह ताला ने मौत जो है वो आजाद की थी, है जिंदगी बाद में दी थी अल्लाह ताला ने कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, कुल्लो नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, मौत एक दिन आना है।
0: जी बिल्कुल।
1: औलाद चली जाती है उसका वक्ती तौर पे दुख होता है तकलीफ होती है, भाई चला जाता है दुख होता है, माँ बाप चले जाते हैं दुख होता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ वो दुख जो होता है वो जख्म भरना शुरू हो जाते हैं, इंसान अपनी जिंदगी में उसी तरह रवा दमा रहता है के हाल।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन वो सब्र अल्लाह ताला की जात देने वाली आती, ठीक है, वो कहते हैं ना कि दुखों को मदावा कोई नहीं करता, ये काम उस जात के अलावा कोई नहीं करता। तो अभी वो मोहतरम कह रहे थे कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर
0: कर्बला हर कर्बला के बाद। बहुत ही खूबसूरत भाई ने मिसाल दी, कमाल मसाल दी, मिसाल दी।
1: मैंने बोला चलो मैं शेर मुकम्मल कर दूं तो वो बात, क्योंकि अभी जो उस टॉपिक पे बात करेंगे तो वो तो एक लहदा ही टॉपिक है ना के हारे हैं जी।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन ये जब आपने बात की है और इसके बात होती है कि दुख जो दिया जाता है ना, ठीक है, तो उसका मुतावा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे किसी की मर्ग हो जाती है, जैसे किसी की दुनिया से वालदा चल जाती है, भाई चला जाता है, तो लोग जाते हैं, लोग तसल्ली देते हैं, कहते हैं यार दुख ना कर, हम तेरे दुख में बराबर के शरीक है, ऐसे ही होता है ना
0: जी, ऐसे ही कहते हैं हम आपके दुख में बराबर के शरीक है। हाँ जी बिल्कुल,
1: जिनके हम जिनके एक लफ्ज या एक जुमला कह देने से अगले को इतनी तसल्ली हो जाती है और उसका जिनके बोझ या उसका दुख हल्का हो जाता है, ठीक है,
0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तसल्ली देने नहीं जाते, बल्कि तसल्ली करने जाते हैं कि अगला कैसे जी रहा है।
0: ऐसा ही है,
1: तसल्ली देना, एक ऐसे लोग होते हैं जो तसल्ली
0: अपनी तसल्ली करने जाते हैं कि बंदा कैसे जी रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
1: तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला ही, दुख भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं और सुख भी अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को कोई कभी किसी जिंदगी में कोई दुख ना दे, ठीक।
0: आमीन, सुमामीन।
1: अगर दुख देता है तो वो सबर भी देने वाली वही खालिक की जात है
0: जी। बल्कि ये है ना, इलामा इकबाल का शेर है कि बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, दुख हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। कोई भी बंदा दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ ना होगा जिसको जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमारी प्रोग्रामिंग में, हमारे लाइफ के पैकेज में डाला है। हम ये नहीं समझ सकते हैं कि सिर्फ हमें ही दुख मिला है, किसी और को नहीं मिला। हर इंसान के साथ दुख है, बस यही दुआ होती है ना कि अल्लाह ताला दुख तो है ही, जो हमारी नसीब में लिखा है, उससे लड़ने की तौफीक अता फरमा।
1: क्या कहने, बिल्कुल सही आपने 110% जो है ना दुरुस्त फरमाया। जैसे अभी वो बहन कह रही थी ना कि किसी के छोड़ जाने से, या जैसे मर्द छोड़ देता है तो औरत ऐसे अपना चलो जी मर्द बन के गुजारा कर लेती है, ये कर लेती है, देखो ये एक अलहदा चीज है, ठीक है
0: जी।
1: ये होता है सोसाइटी के लिए कि जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, जो हमारी बहनें जिनके मर्द या खुदा ना करे दुनिया से चले जाते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं, इस सोसाइटी में या यूके में, इंग्लैंड में या यूरोप में, उनको ऐसी सहूलियात मौजूद होती हैं कि वो अपना जिनके बगैर मर्द के भी रह सकती हैं। लेकिन शरीयत ये कहती है कि मर्द हाकम है और औरत महकूमा है, अगर शरीयत को देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर यही मिसाल हम पाकिस्तान में दें ना, तो वो हमारी ऐसी बहनें हैं जिनको मर्द छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं ना तो न दीन की रह जाती हैं, न दुनिया की रह जाती हैं, उनके बच्चे बिश्कीर करें,
0: रुल जाते हैं, बिल्कुल
1: रुल। और वो देखे, वो लोग कह रहे होते हैं, वो बहनें बेवा कह रही होती है, कोई है मर्द जो मेरे साथ शादी करे, जो मेरा सहारा बने? यकीन करे कि मर्द के बगैर औरत बेसहारा होती है, यकीन करे। हाँ जी
0: जी,
1: अगर मर्द हो, मैं नहीं कहता कि सारे मर्द एक जैसे हैं, ठीक
0: जी जी। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात कैसी है, बिल्कुल।
1: जितनी बातें अच्छी होती हैं कि जो आन दी नहीं कह जाती, लेकिन वो समझने वाले माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बंदा कौन सी और किधर की बात किधर कर रहे हैं।
0: हाँ जी, तो यही बात होती है कि अपना दुख जो है बंदे को अल्लाह पे तवक्कुल करके, मुझे पता है, मुझे समझ आती है, खुलासा ये है कि अल्लाह पे तवक्कुल करके आपको अपने दुख के साथ मुकाबला करना चाहिए, और अल्लाह ताला ही है जो दुख को मिटा भी देता है और सबर भी देता है।
1: उसके उसकी जात के सिवा कोई देखे, एक उसका दर है, ठीक है
0: जी।
1: कि उसके दर में हम 5 दफा जाएं 6 दफा जाएं 7 दफा जाएं, वो मना नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि मेरे दर पे आओ, उनसे मांगो
0: जी,
1: उनसे मांगो।
0: ऐसा ही
1: है, भाई के एक दफा चले जाएं या 2 दफा 3 दफा चले जाएं, तो वो चौथी दफा वो बोलेगा यार क्या तूने एक वो रूटीन ही बना रही है। लेकिन खुदा की जात का दर है कि जितनी दफा चाहे अगला, यानी कि अल्लाह खुश होता है,
0: अल्लाह खुश होता है। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, बिकॉज हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, एंड आपकी बातें एक एक लफ्ज बहुत ही खूबसूरत कीमती अल्फाज आपने हमें दिए, और इसीलिए आप समझ गए ना मैं क्यों कहती हूँ, भाई चौधरी रुखसार ऑन एयर जाइए, ऑन एयर बातें कीजिए ताकि सब लोग सुने। जज़ाकअल्लाह खैर,
1: सलामत रखें, यकीन करें कि ये मेरे जो बातें टूटी फूटी होती हैं, तो मैं तो शुक्र करता हूँ कि ये मेरी टूटी फूटी बातें जो होती है ना आपके सामने, जो कहते हैं काम कर लेते हैं, यकीन करें।
0: नहीं, बहुत अच्छी बातें आपकी होती हैं, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया
1: आपकी, थैंक यू,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी सामीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जी चौधरी रुखसार साहब की खूबसूरत बातों के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट सैटरडे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre to... A UK university has confirmed the Fly Dubai co-pilot at the centre of an alleged hijack attempt was enrolled on one of its remote courses in aviation management. The United Arab Emirates Prosecutor General claims Omani national Hamam al-Hamami targeted his colleague with an axe inside the cockpit trying to carry out a terrorist attack. Andrew Nicholson is the chief executive of a company which provides aviation risk analysis. He says international regulations require ongoing security checks for pilots.
4: Those background checks clearly will cover the political leanings of those of the individuals. The question here, though, is whether that information could then be transferred between Oman and the UAE.
3: A sixth man arrested in connection with a suspected terror plot at RAF Fairford has been released on bail. The dual UK-Iranian national was detained on suspicion of preparation of terrorist acts over last weekend's incident in Gloucestershire. Two people, including a five-year-old girl, are in a critical condition after a car drove into a crowd watching rugby in Newcastle in Australia. One man's been arrested. 10 people have been injured in total. Donald Trump has gone back on a threat to ban diesel exports. The US president announced a decision hours after G7 nations had agreed to release fuel from stockpiles. It's part of efforts to bring down the cost at the pump sparked by the Iran war. Oil market analyst AJ Parmar has given his take on the situation.
5: That will help to alleviate prices to some degree. We don't know the exact mix of diesel that will be released as part of that, but we wouldn't see prices come down back to the kind of pre-US-Iran war levels anytime soon. As long as that war is continuing, we are looking at very elevated levels of prices.
3: NATO jets have been scrambled in Lithuania after a suspected drone was detected entering its airspace from Belarus. Vilnius Airport in the country's capital was briefly closed. And there's a warning, ticks carrying a severe and life-threatening virus are living for longer in the UK. It's due to more regular heat waves. That's the latest. I'm Stevie Schillinglaw.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: Hey, suno. Plan. Plan ek ghadi hai. Swiss watch. Watch ke purze yani hum perfect. To ghadi bhi perfect. Tick tock, tick tock. Warna wahi watch chala. Bomb ban ke hum sabko. Boom. Samjha kya? हाँ तो मैं क्या कह रहा था प्लान एक बार और प्लान
1: पक गया थक गया तू जो भी बोला मेरे सर में अटक गया भाई।

0: भी किसी की दुल्हनिया बनोगी क्या मुझसे शादी करोगी?
1: मुझसे शादी करोगे? लाइफ बना दूंगी,
0: लेकिन पर्दे तक तो ठीक है, पर असल में
1: माझ्याशी लग्न करशील? मजेत रहशील?

0: मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक सवाल है जो जितनी बार मैंने सुना है वो दुनिया में किसी ने नहीं सुना होगा। कब कर रहे हो?
1: कब कर रहे हो?
0: पहले ये सवाल सुन के मैं बहुत चिढ़ता था, अब मैं भिड़ता हूँ। कोई पूछता है कि कब कर रहे हो तो मैं पूछता हूँ

चोरी के आम का हर कोई दीवाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया तो सियाना। जिसकी लाइफ में वाइफ नाम की नाइफ है उसे बच के सेफ खेल।

0: में जिस पति की धाक नहीं चलती, बाहर उसकी आंख चलती। समझ लीजिए द वाइफ लड़की लड़की तो अपने आप खुल जाती नजर की खिड़की, खुल जाती नजर की खिड़की, नजर की खिड़की खुल जाती नजर की खिड़की।
1: नंजोते मदवे मारकंडू मजा मारू।
0: कहते हैं कि शादी के पहले मर्द अधूरा होता है, करेक्ट। शादी के पहले मर्द अधूरा होता है और शादी के बाद फिनिश। अब क्या हुआ, लग गया झटका जबरदस्त?
1: कब कर रहे हो?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: पहला ही पुछिया नी किथे जाना। मैं क्या अज तेनू फुलाला सूट ना लेके देना ही देना।
1: हाय हाय सोनिया, अज तो तेरी जेबा परियां लग रही हैं।
0: ओ तेनू ही पता बल्ले बल्ले भाई आज बड़ी रौनक सोह रोड ते।
1: देखी चल देखी चल, व्हाट आर यू बाय द घोड़ी ऑफ फुलाला सूट देन। हां
0: बाचो बाचो किथे चलियां। ओहो
1: तू गोरी नाले व्याह करा लेंदा।
0: ओ की मैं ओदे अंब तोड़ ले।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: up.
1: Have you tried down the road?
2: We can get it in, but it won't be for a few days.
3: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
4: गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां ई कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया
5: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
4: चाचा केड़ा चाचा
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना ए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंडा ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: 21121 Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014, Sophie Jewelers.
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935।

0: प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 PM till late at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
2: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip-Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 p.m. till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926.

0: का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा? केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्के नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना, कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
4: We can get it in, but it won't be for a few days.
5: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.